0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसे मिला। दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म संगीत कार्यक्रम, और फिल्म संगीत कार्यक्रम को यहीं देते हैं विदाई और लेकर चलते हैं आपको आपके मनपसंद अगले कार्यक्रम हल्लू फरमाइश में। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। सुबह के 10 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में प्रसारण होगा आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश का। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर चालू है, आप हमें अभी कॉल करके आपकी मनपसंद गाने की फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रेडियो दोस्त

0: मनोरंजन का सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते सर।
0: नाम बताएं आपका।
1: शहनाज
0: शहनाज जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से। बिल्कुल
1: इतिहास मूवी का सॉन्ग है चोरी चोरी।
0: सुना रहा हूँ शहनाज जी, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया जाता है।
1: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं आपका।
1: शिवम।
0: शिवम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: लाइसेंस।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करें तो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताइए सर।
4: महराज मीना।
3: हाँ जी
4: महराज मीना,
3: कहाँ से बात कर रहे मीना जी?
4: गंगापुर सिटी।
3: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से?
4: रूट।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का गाना रेडियो DS में कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ महावीर जी से।
0: चौधरी जी, महावीर जी से बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
1: बढ़िया गाना लाए
0: बताएं सर।
1: शिक्षक का नाम है घर की इज्जत
0: जी,
1: गाने के बोल रहे हैं भोली सूरत वाला।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश के, बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस पे। खुल गया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए सर।
0: सर मैंने कल फोन लगाया था, मेरा ना पसंद का गाना सुना ही नहीं आपने।
1: नहीं सर, ऐसा नहीं होता, आपने सुना नहीं होगा, सबकी पसंद के गाने चलते हैं, हम तरीके से चलाते हैं। आपका नाम बताएं।
0: मेरा नाम है बीएस राज ठाकुर, MP 77, आगर मालवा, सुसनेर तहसील, मैना गांव से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैंने वो आपको लिंक डाला था कल उस गाने का।
1: लिंक डालने से नहीं सर, व्हाट्सएप हम बहुत कम देखते हैं, आप तो डायरेक्ट इस पे बताओ कौन सी फिल्म का कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: फिल्म का नहीं सर, वो तो राजस्थानी गाना है, वो मुंह तेरे होठों पे नाम लिखा दे मेरी जान।
1: ऐसा गाना नहीं चलेगा सर, केवल फिल्मी गाने चल सकते हैं फरमाइशी कार्यक्रम।
0: राजस्थानी गाना, राजस्थानी यहाँ सर है यही।
1: राजस्थानी गाना सर शाम को 4 बजे चलते हैं हमारे यहाँ से।
0: शाम को 4 बजे चलते हैं?
1: हाँ।
0: अभी चलेगा?
1: अभी नहीं सर, केवल फिल्मी गाने के लिए आप फरमाइश कर सकते हैं, आपका गाना तुरंत चल जाएगा।
0: तो फिल्मी गाना में सर वो सड़क पिक्चर का गाना सुना दो मेरे को।
1: कौन सा गाना है?
0: जब जब प्यार में पहरा हुआ है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना, रेडियो डीएस में खुल गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।

बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश करते हैं। पतली पतली।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरतल।
3: हेलो, हाँ जी नमस्कार
4: सर। नमस्ते सर। नाम

0: क्या है आपका? सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना लेते हो?
0: हाँ जी,
1: अरे झोली मेरी आम होगी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: तुम अंदर जाओ।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था,

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामत के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला

0: हेलो। हाँ
1: जी, नाम बताएं।
0: कविता।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: अंकित
1: जी,

0: जी नाम बताए।
1: जो मैंने अभी फरमाइश डाली थी मोनिका के नाम से, वो कब तक चलेगी?
0: मैम आपने बताया नहीं अभी, मोनिका जी ने कॉल किया नहीं हमको, मोनिका जी कॉल करेगी तो हम अपने आप सुना देंगे।
1: अरे वो अभी उनने बोला है कि
0: क्या बोला
1: है? चला देना।
0: अच्छा
1: वो कहीं अभी गई है।
0: अच्छा आपको सिफारिश भेज दी उसने?
1: हाँ।
0: अच्छा क्या करते हैं वो?
1: वो डॉक्टर है।
0: अच्छा डॉक्टर है, फिर तो सुनाना पड़ेगा भाई।
1: कब तक?
0: आपने कभी इंजेक्शन खाया उनके हाथ से?
1: हाँ बहुत बार।
0: कितना दर्द हुआ?
1: बहुत भयंकर।
0: अरे भाई फिर तो सुनाना
1: पड़ेगा। मेरे को तो अब भी दर्द होता है।
0: अभी भी होता है?
1: डॉक्टर ऐसे कहते हैं आप 11 साल हो गया।
0: क्या बात है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप?
1: फिफ्थ क्लास में। और डायरेक्ट घुसा दिया और डायरेक्ट निकाल दिया।
0: वाह क्या बात है।
1: और रुई लगा दी।
0: रुई भी लगा दी थी?
1: हाँ।
0: बताओ यार रुई नहीं लगानी चाहिए थी।
1: रुई लगा दी कुछ नहीं हुआ बच्चा, फिर मैंने बोला आपके लगाओ फिर डायरेक्ट निकालो और डायरेक्ट घुसा दू, आपका तो स्वाद आएगा।
0: अच्छा स्वाद भी आता है क्या?
1: हाँ
0: बिल्कुल। बताओ कौन सा गाना सुनाना है? चलो
1: ए?
0: कौन सा गाना सुनाना है?
1: नस नस दलम मेरी नस नस क्यों दुखे।
0: इंजेक्शन नहीं लगवाया इसलिए दुखता है ना सर?
1: ए?
0: इंजेक्शन दोबारा लगाओ फिर नहीं दुखेगी नस नस।
1: ठीक है
0: ठीक है।

0: शिपियर्स म्यूजिक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो हेलो, नमस्कार सर
4: जी। नमस्ते, नाम बताएं।
3: मोहम्मद सहवाज।
4: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
3: यूपी ईस्ट फर्रुखाबाद से।
4: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: जीत का सुना दीजिए।
4: गाने के बोल?
3: कोई सा भी सुना दीजिए।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका फरमाइश का ये बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना

0: My name is Astha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
1: हेलो
2: जी, नाम बताइए सर।
1: मोहम्मद शादाब खान।
2: शादाब जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: उत्तर प्रदेश फरुखाबाद।
2: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: संदेश से आते हैं।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना।
1: इतने दिन सर बंद क्यों रहा ये?
2: अरे सर, ये स्टूडियो में थोड़ी सी आग लग गई थी शॉर्ट सर्किट से, इस वजह से।
1: वही तो सर, मैं रोज नंबर लगा रहा था और चैनल भी आपका नहीं चल रहा था।
2: हाँ, अब चल रहा है ना अच्छे से?
1: हाँ, अभी अच्छे से चल रहा है। थोड़ी आवाज स्लो आ रही है सर।
2: आवाज को बढ़ा देंगे सर।
1: ठीक है, थैंक यू सर।
2: ओके।

0: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: और जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी।
0: कैसे हो जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो?
1: ये फिल्म है दो दिलों का संगम
0: जी,
1: मेरे प्यार में है वो दीवान की।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन।
1: ओके सर, थैंक यू,
0: वेलकम।

0: पूरा जी धाम।
1: तो फिल्म गाना में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का गाना सुना दो मैं।
0: हेलो जी, एक गाना सुनवा दीजिए।
2: जी बिल्कुल सुनाएंगे सर, इसीलिए बैठे हैं। आपका नाम बताएं।
0: नाम सत्यनारायण है, संगापुर सिटी,
2: सत्यनारायण
0: करोली फाटक।
2: जी सत्यनारायण जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
0: चारों धामों से निराला ब्रज धाम दर्शन कर लो जी।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: गुलशन।
1: गुलशन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: अरे माते घूमर दम के तेरे कानों वाली चमके।
1: सुना रहे हैं गुलशन जी आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में कुल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी नाम बताएं।
1: अभिषेक मीना।
0: अभिषेक जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते
1: हैं?
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना। हेलो।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: हाँ, धीरू भाई ठाकुर।
0: धीरू भाई ठाकुर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: अबू कला।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: गाना है वो ए शंभू बाबा ए मेरे भोलेनाथ, है ना, दुना पटवाल का गाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे,
2: गंगापुर सिटी के हर कोने।
3: हेलो जी, नाम बताएं सर।
4: लखन सिंह गंगापुर सिटी से।
3: लखन सिंह गंगापुर सिटी से, बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
4: वो मासूम शर्मा का।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में, कुल किया धन्यवाद। हेलो
5: हेलो
3: जी, नाम

0: फरमाइश
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडी।

0: जी नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलखेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस के माध्यम से?
1: मेरा परदेसी न आया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना रेडियो डीएस में खुल के।
1: धन्यवाद।

दोस्तों वक्त हो चुका 11:32 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते सर, नाम बताएं।
1: ठंडी राम गुजर बोल रहा हूँ।
0: ठंडी राम जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गुजर क्या से बोल रहा हूँ।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं तो छोड़ के कहाँ जाऊँ।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश कहता हूँ।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: जी सर, मैं सुनीता बोल रही हूँ।
0: सुनीता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सुनीता जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डी एक्स से?
1: सर, बेवफा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं।
0: कौन सा गाना है?

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: मेरा नाम विश्राम।
1: विश्राम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: मैं गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तो मेरे को गाना सुनना था KR देवता का।
1: सर केवल फिल्मी गाने ही चला सकते हैं?
0: अच्छा, फिल्मी गाने चला सकते हैं क्या?
1: यस सर।
0: ठीक है, तो आप वो दिलवाले मूवी का चला दो, कुछ जीता था जिसके।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप।
0: साथ में लखन जी की भी।
1: अच्छा, लखन जी की। ठीक है सर।

0: कहीं तुमने सपना की तरह धोखा तो नहीं दिया?
1: नाम बताएं सर।
2: हाँ भैया नमस्ते।
1: नमस्ते, नाम बताएं आपका।
2: जी भैया योगेश जांगड़े पे, मैं तेरा छत्तीसगढ़ से।
1: योगेश जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: सिर्फ तुमसे सुनवा दीजिए, पहली पहली बार मोहब्बत की है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश के बाद। गाना रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद
2: धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6।
2: हेलो सर जी, मीना सर जी, प्यार सत्कार में सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप?
2: ठीक है सर जी, मेरा DH रेडियो गंगापुर बाबा नानक चढ़दी कला रखे जी।
3: बताएं सर, पहले तो आपका नाम बताएं हमें।
2: हाँ जी सर जी, मैं जी पिंड मावड़कोट डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोल रहा सर जी।
3: जगजीत मट्टू जी, बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डी एस से?
2: सर जी पंजाबी सिंगर है जी कुलदीप माणक साहब जी।
3: कुलदीप माणक साहब जी का बिल्कुल कौन सा गाना है?
2: उसका गीत है जी, मां का गीत है जी, गुनगुना के बताऊं जी? कितना
3: बिल्कुल गुनगुना के बताएं सर आप।
2: सुनो जी सुनो, क्या बात है सर जी, छोटे गल बात करके मन खुश हो जाता जी।
3: बिल्कुल, हमारे रेडियो डीएस में जो भी कॉल करते हैं उनका मन खुश ही रहता है सर हमेशा।
2: क्या बात है जी, आपने पाल के बेटा आया सुबह अभी, बहुत चंगा जी, बेटी मेरी सत श्रीकाल बुला लो, ठीक है सर जी?
3: बिल्कुल बिल्कुल सर।
2: हाँ जी, लो सर जी सुनो, आओ माँ होंगी माँ वो दुनिया वाले, आओ माँ वो ठंडी सावे दुनिया वाले, माँ दी पूजा रब दी पूजा, माता रब दा रूप है दूजा।
3: बिल्कुल
2: सुना जी सर, ठीक है सर जी। मेरे यार दोस्त जी घड़ी साहब उन्होंने वॉइस आई सुना जी।
3: नाम बताए सर आपके यार दोस्तों का?
2: मेरे यार दोस्त जी अमरजीत सिंह पाला जी, प्रिंसिपल रिटायर हो जी है
3: जी,
2: बाबा नानक चढ़दी कला च रखी, सत श्री अकाल जी।

0: हेलो, हाँ जी, नाम बताए।
1: नाम लखन सिंह।
0: लखन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कच्चे धागे मूवी का कोई सा गाना सुना दो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:10 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल
2: DS89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा
4: हेलो
5: जी, नाम बताएं।
4: कोमल।
5: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: गंगापुर सिटी।
5: बताएं कोमल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: ना रात हूँ मैं ना दिन हूँ मैं।
5: ना रात हूँ मैं ना दिन हूँ, बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: नाम सुशीला करोली फाटा गंगापुर सिटी।
0: नाम सुशीला करोली फाटा गंगापुर सिटी से कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से? हाँ,
1: भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में मेरा नमन स्वीकार कीजिए।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया। धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: रोहन।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: वो गंगापुर।
1: गंगापुर से बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गाना
1: बता दो, बाद में आते लेना, पहले गाना बता दो। हेलो, हेलो,
0: तो वो वाला बता दो।
1: कौन सा? जी,
0: शाहरुख खान का।
1: शाहरुख खान का
0: दिलवाले दुल्हनिया ले रही
1: है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत देर में याद किया, पर गाना बहुत अच्छा याद किया। सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना?

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: शिवी मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगा बुशिटी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: धुरंधर सिंह का सॉन्ग सुनना है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, धुरंधर फिल्म का
0: जरूर सुनाना सर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
2: शिवी मीना।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी से।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: धुरंधर सिंह का सॉन्ग सुनना है।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको धुरंधर फिल्म का।
2: जरूर सुनाना सर।
3: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: क्या देवता के मीना की चला दो। कौन सा?
3: केवल फिल्मी गानों के लिए ही आप फरमाइश कर सकते हैं सर रेडियो डीएस में।
4: और सर चला दो सर,
3: केवल फिल्मी गाने ही बता सकते हैं सर आप।
4: अभी चल रहा है ट्रेंडिंग।
3: बिल्कुल ट्रेंडिंग कोई भी सॉन्ग सुना देते हैं सर आपको फिल्मी। हेलो।

0: हाँ जी,
1: हाँ
0: जी, नाम बताएं।
1: कविता।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगा पुरी सिटी से।
0: पता है कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: दुपट्टा तेरा तो नौ रंग का।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपका।

0: जी नाम बताएं।
1: अंकित।
0: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: तुम ही आना।
0: हाँ जी
1: तुम ही आना मर जावा।

0: हेलो
1: जी, नाम बताइए सर।
0: सर पंकज शर्मा।
1: पंकज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सर मैं गंगापुर सिटी से बात कर रहा हूँ।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: एक बात कहूँ मैं जादू से।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये गाना रेडियो डीएस में। कुल क्या धन्यवाद।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: गुड आफ्टरनून दोस्तों, दोपहर का एक बज चुका है। अभी आपने सुना हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश को कार्यक्रम की यहीं विदाई लेते हुए थोड़ी देर बाद आपको लेकर चलेंगे नए तराने कार्यक्रम में।
0: दिल तक 89.6 DSFM पे
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: समझ में आता नहीं आ रहेगा, कुछ बोलो यार, छोड़ो यार सर, मेरे को
4: गाने का इक्वल वैल्यू है।
3: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना,
5: अगर तू समझ नहीं रहा है ये हिट गाना है तो इको नहीं करना, तू मत

0: Hey guys, this is me Gurashi Singh and that is Tejinder Singh and I really hope हमारे ये नया पंजाबी वेडिंग मैशअप आप लोगों को पसंद आया हो
1: और अगर आपको ये मैशअप पसंद आया तो don't forget to like, share, comment and subscribe to the channel.
0: The link is down below. Subscribe.

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है, और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है किसी को नहीं पता। आज की कहानी है भानगढ़ की, जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियां हैं। और जब भी भारत की सबसे भूतिया और श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ के किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था, और उस वक्त भानगढ़ में 9000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया, और आज लोगों के बीच भानगढ़ के लिए इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। बकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इसके रखरखाव का काम करती है, भारतीय पुरातत्व विभाग एक बोर्ड पर यह साफ लिखवाया है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में भानगढ़ के किले में जा सकते हैं, पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। इस किले के खंडहर भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी किसी को साफ साफ नहीं पता, मगर इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उन कहानियों में दो ऐसी कहानी हैं जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सुनते सुनाते हैं। इनमें से पहली कहानी गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नामक एक तपस्वी रहते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलवाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा, आप इस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि उसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे और सभी का बहुत आदर किया जाता था। उनकी कही किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखवाई कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ के इस बात का ख्याल अगली दो पीढ़ियों तक रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ के किले को और ऊंचा करवा दिया।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों, वक्त हो चुका है 2:00 के। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तरह 30 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तरह ने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली बिसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
3: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ बने रहें बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो DS पर

0: मैं क्या जी, सत श्री अकाल।
1: ईद मुबारक। ताडी खास मेहमान नूं ताडी इक चीज बड़ी तंग कर रही है।
2: की?
1: तेरी झांझर।
2: तू झांझर फड़ा मेरी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त

0: मनोरंजन का सरताज है।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है, 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक।

हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: तो वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
4: दीदी सादर नमस्कार।
5: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
4: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
5: हाँ जी,
4: सब लोग अच्छे हैं, रेडियो सुनते रहते हैं।
5: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, लता जी की आवाज में।
5: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: राजर।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: दीवाने।
1: दीवाने?
0: हाँ दीवाने।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: शुभम
0: से बात कर रहे हो?
1: कुमार, हम गंगापुर
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: एमसी स्क्वायर का ले ले रोम।
0: ओके, पर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश परी।
2: लंबड़दार

0: हेलो।
1: हाँ मैम।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जी गौरव रावत, गौरव मेरा नाम है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चम्मल गाड़ी।
0: चम्मल गाड़ी।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: जी ठंडे राम गुजर बोल रहा हूँ, राम बदर जाते।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मत करना का भी अभिमान, जपले हरि का नाम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।
0: ओके थैंक यू,
1: यू वेलकम सर।

0: हेलो दीदी, राधे राधे।
1: दीदी राधे राधे, नाम क्या है आपका?
0: मैं बाढ़कला से बोल रही हूँ, समता जादौन।
1: दीदी कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मुझको गाना सुनना है, राधा बिना है किसने अधूरा।
1: ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: सुनाइए दीदी, सुनाइए। थैंक यू।
1: वेलकम।

0: फरमाइश करी जाना।
1: हेलो
2: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
1: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिल्लू खेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मलमा सिपैया हाय रे तेरी दम्बूक से डर लागे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:58 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोनिका मीणा जी की। मोनिका मीणा जी ने हमें कॉल किया है सवाई माधेपुर से। सुनते हैं इनकी फरमाइश परिएगा 99.6 रेडियो डीएस पर।

0: सर टाइम पे चलेगा, बार बार मत दिया करो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: गुलशन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलवर जानी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: नमस्कार सर।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: अयाज खान पुराने निजामत।
0: सर कौन सा गाना सुनना होगी?
1: सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

उग्यो हरिये बाग में खुशी भई बनराय, और बांस उग्यो डर डूंग रहे थरक रही बनराय। जहां एक तरफ चंदन के उगने से वन में चारों ओर खुशी और आनंद का माहौल हो गया, कि अपनी शीतल छाया के साथ साथ दिव्य सुगंध से पूरे वन को महकाएगा। वहीं दूसरी ओर बांस के उगने से वन में चारों ओर उदासी छा गई, कि एक दिन ये नुगरा बांस खुद जलेगा और पूरे वन को जला देगा। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, जिसका डर था वही हुआ, उसी बांस के कारण जंगल में आग लगी।

लो लागी डावे डूंगरे मिल गई झाड़ो झाड़, और तो पंखेरू सब उड़ गया और हंस लो बैठो डाल। जंगल में चारों तरफ आग बड़ी भयंकर फैल गई, सारे जीव जंतु पशु पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए। पर एक हंस आग की लपटों को चीरता हुआ चंदन की डाली पर बैठ गया। मृत्यु से बिना डरे भाव के साथ अपनी डाली से लिपटा हुआ देख चंदन हंस से बोल पड़ा, कहा, हे हंसराज, मेरी तो जड़ें बड़ी पतालों में गहरी हैं, इसलिए इस आग में जलने को विवश हूं, पर तुम्हें तो भगवान ने पंख दिए हैं, अपने इन पंखों का इस्तेमाल कर और इस जंगल और आग को छोड़कर अपनी जान बचाकर चला जा। पर हंस आंखों में आंसू लेकर बोला, हे चंदन, तेरे फूल खाए, तेरे पत्ते खाए, तेरी डाली डाली खेले, तेरी छाया में अपना जीवन बिताया, और आज इन आग की लपटों को देखकर, आज इस मृत्यु के भय से अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं तो मेरा प्रेम कैसे।

फल खाया पान पिरो लिया और रम्या डालो डाल, थे तो जड़ो और मैं क्यों उबरा, जीनो है कितना साल। हंस रोता हुआ चंदन से बोला है, चंदन मेरे जीवन पर तेरे बड़े उपकार है और आज इस आग की लपटों और इस संकट की घड़ी को देखकर मैं अगर तुझे छोड़ के चला जाऊं तो मेरी मित्रता कैसी और मेरा प्रेम कैसा। एक तरफ हंस और चंदन का टूट प्रेम देखकर भगवान की आंखों में आंसू टपक पड़े और इस प्रेम के लिए भगवान ने उस जंगल में इतनी भयंकर बारिश कर दी कि चारों तरफ खुशी का माहौल हो गया और आग की लपटें भी बुझ गई। साहेब कबीरदास जी ने कहा,

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों, आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज, आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों, आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

कहे मिरगलो सुन ए मिरगली, तू धीरज मत खोए, तू तो कूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो होए। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा, तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मिरगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रो सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

0: इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सवेरा हो गया है, चिड़ियाँ घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम मिलकर, स्कूल चले हम।
1: डियर साइंस एकेडमी, जहाँ पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।

0: थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग खड़े रहियो एंड डू सब्सक्राइब टू एमडी म्यूजिक।
1: और ये नीचे जो नोटिफिकेशन बेल है इसको जरूर प्रेस करिए ताकि आपको सारे लेटेस्ट गाने के अपडेट्स मिलते रहे।
2: People on the floor.

0: दिल
1: वन सेकेंड
2: पीछे कुआं आगे में 1 2 3 4
3: गेट ऑन दैट

0: मायसेल्फ राहुल, 40 साल का हो गया और नॉर्मली इस एज तक हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आ ही जाता है। मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आया, बहुत बड़ा ट्विस्ट जिससे मेरी लाइफ ही बदल गई।
1: डीसी के साथ जो हुई तुम उसका सोलो विटनेस, इसलिए तुम हमारे साथ कुंभन गांव जाती चेन्नई एक्सप्रेस ले। कुंभन एरिया में मेरा फादर का बहुत रिस्पेक्ट है। यू नो पेरिया तलाई
0: टीचर
1: इल्ले डॉन।

0: छुट्टी मनाने निकला था, तुमने मेरी छुट्टी कर दी।
1: डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन।
2: कोई तो ना
1: मीनम्मा तो काट डालूंगा। हे मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं है।
2: अच्छा, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी?
1: जब से मेरी लाइफ में आई हो, माय लाइफ फक्स।
2: व्हाट
1: फक्स?

0: करूंगा। हाय चिंता ता चिता चिता चिंता ना कर हे चिंता ता चिता चिता मैं हूं इधर।
1: मीनामा नहीं पाड़
2: तो फिर जा रे चाचा जा रे तुम सब चाले में जा रे तो फिर जा रे चाचा जा रे तुम सब चाले में जा रे
0: शौचालय जाने क्यों मुझको शौचालय भेजे करना क्या चाहती हो जरा कह दे
2: तेरी

0: जी क्यों मुंजरी वरना सुंदरी फेंक डालो सर, आपको अपनी आइटम से जो करना है करो सर, डू डू कल्याणम डू स्वागतम डू व्हाट यू वांट टू डू सर, जस्ट लेट मी गो, थैंक यू सर। आपकी आइटम, आपको जो आइटम गाना करना है उसके साथ कीजिए सर, अब तुम्हारे हवाले मीना साथी हो।
1: टाइप पोर्की, एक नंबर का कुत्ती, कमीनी, मतलबी, अपॉर्चुनिस्ट है तू।
0: क्या कहती तू?
1: मुझे छोड़ के भाग जाती?
0: समझने की कोशिश करो।
1: क्या समझ?
0: वो
1: क्या? वो
0: अरे वो
1: क्या को?

तुझको बचाने घन चक्कर, हाय मैंने चलाया ये चक्कर।

0: वॉशिंग पाउडर मीना
1: व्हाट?
0: मैं कितना भी कमीना इंसान तो हूँ मीना, सोच लिया बस मैं तो करूँगा तेरी हेल्प मीना, अब तू मेरी बात समझीना।

0: Yay!
1: समझ में चमक चलो यू टू सोचे में लल्लो बनाएगा मैं तो उल्लो
2: तंग बड़ी हिंदी में कहा
1: भले भले मैं

0: क्या हुई, गाड़ी खराब हो गई?
1: नहीं तो, किसने कहा?
0: फिर ये धुआं?
1: ये धुआं? वो गाड़ी सिगरेट पी रही है। और पता है मैं बाहर क्यों आया? मैंने सोचा हम यहाँ पे आराम से तंगाबलि जी का वेट करेंगे कि जब वो यहाँ पर आएंगे हम तीनों मिलके संग संग हुगड़ी खेलेंगे। लल्ला लल्ला लल्ला, दिखता नहीं तुमको? तुम्हारी हिंदी से ज्यादा खराब तुम्हारे अपा की खटर।
0: ये गाड़ी तुमने खराब
1: की? इसको गाड़ी मत बोलो, गाड़ियों की बेइज्जती होगी।
0: इस कार ने तेरी जान बचाई।
1: अरे ये कार नहीं, बेकार है, धिक्कार है।
0: अपा की फेवरेट गाड़ी।

0: ये लो मीनम्मा बेबी, तुम्हारे अप्पा की फेवरेट गाड़ी। एक्चुअली प्रॉब्लम तुम्हारे अप्पा का नहीं, उनकी खटारा का भी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा है। वो क्या है, तुम जहां पर भी जाती हो ना, मुसीबत का फ्री पैकेज साथ में लेके जाती हो। बैड लक। एक्चुअली तुम काली बिल्ली हो, काली बिल्ली से भी बदतर। काली बिल्ली का रास्ता क्रॉस कर लो ना, तो काली बिल्ली का रास्ता साफ हो जाए।
1: फिर क्यों मेरे साथ?
0: मैं क्यों हूं तुम्हारे साथ? अरे तुम मेरे साथ क्यों हो? प्लीज मीनम्मा, मेरा पीछा छोड़ दो। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गो माय वे, यू गो योर वे।
1: ठीक है, फाइन बाय मी। बट बाय द वे, गाड़ी बगाती तुमने उल्टा रास्ता पकड़ी। अभी वापस जाने के लिए ओनली वन वे, कोम्बन क्रॉस करनी पड़ेगी। कोम्बन?
0: ए कोम्बन करके डराओ मत। अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी ना, तो मैं ऐसे मैनेज कर लूंगा, ऐसे ऐसे ऐसे।
1: इम्पॉसिबल।
0: ए मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं।
1: अच्छा, कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी?
0: डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन।
1: तू तो लो
2: थैंक्स।
0: पता है मुझ पे एक फिल्म बननी चाहिए, हंसते हंसते लग गए रस्ते, क्योंकि जब भी लोग मुझे हंसते हंसते उठाते हैं मेरे रास्ते लग जाते। और तुम भी मीनम्मा, क्या ये हट, इस बार क्या झूठ बोला तुमने?
2: मैंने बोला कि हम तुम शादी करके भागी।
0: अरे यार, ये शादी करके भागने की स्टोरी का कॉपीराइट है क्या तुम्हारे पास? फिर क्या बोला?
2: सेकंड झूठ ये बोला कि तुम इतना अच्छा है कि तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी।
0: नेवर।
2: तभी तुम नो में नो मिलाई कि नहीं छोड़ेगी।
0: हाँ, हाँ।
2: फिर मैंने बोला कि तुम जर्नी से इतना टायर्ड हो गया कि तुमको चक्रे आ गई, तभी तुम मुंडी हिलाई।
0: तेने ऐसा ऐसा मुंडी मुंडी मुंडी हिलाया, तभी मुझको ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है।
2: इल्ले, अरे वो तो इसलिए क्योंकि मैंने भागने का रीजन ये बताया कि मेरे अप्पा को हमारा अमीरी गरीबी से रोम्ब प्रॉब्लम।
0: या या या
2: कि मैं बहुत रिच।
0: ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स।
2: और तुम हलवाई।
0: तुम्हें किसने बताया कि मैं हलवाई हूं?
2: व्हाट, यू आर अ हलवा वाला?
0: नहीं
2: से
0: हाँ मैं हलवाई। इसमें इतने हंसने की बात है इसमें? ओके, तुम्हारे डॉन से बेहतर होता है हलवाई। यू अंडरस्टैंड? चुप चुप चुप।

0: अरे क्या तमिल में कुड़बुड़ कर रही हो, हिंदी में बोलो ना यार।
1: ये रुम्बा अड़गा रखा।
2: अरे वाह, एक दिन में तुम प्रॉपर तमिल बोलते हो। I love you so much।
0: मैं इस किस्म का लड़का नहीं हूँ।
3: मीना,
4: राहुल,
2: मनी,
1: भूवी,
0: मां काट है।
5: ये नडा नडा करेंगे?
4: हाँ, आवाज़ ना बंगा। नांगे जस्ट बोलो तो पन्नो। सुन ले।
0: पोंगड़ा।
5: ஒண்ணும் புரியலடா
0: டேய், நாட்டி என்ன ரொம்ப அவசரமா அர்ஜென்ட்?